ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी थोड़ी ही देर में आप सुबह 6:02 पर कार्यक्रम सुनेंगे सुप्रभात, जिसमें वीर तमन सिंह आपके साथ होंगे। सुबह 7:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसमें आप दिल्ली जगत की सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ गीतों का आनंद लेंगे। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे गौतम गौर। सुबह 8:02 पर वीर दमन सिंह आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। सुबह 9:02 पर आप सुनेंगे दिल के तराने गाने नए पुराने, गौतम गौर इसमें आपके साथ होंगे। इस कार्यक्रम में आप नॉन स्टॉप लेटेस्ट बॉलीवुड नंबर सुन सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पुराने गीतों का भी आप आनंद लेंगे। सुबह 10:02 पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर, इसमें आप अंग्रेजी गानों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 11:02 पर आपके लिए कंचन कनन लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, इसमें बॉलीवुड जगत की सभी अपडेट्स आप ले सकते हैं, साथ ही साथ बेहतरीन गीत भी आपके लिए सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:02 पर अंग्रेजी कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल, उत्कर्ष इसमें आपके साथ रहेंगे। दोपहर 1:02 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन कंचन कनन, इसमें आपके साथ होंगी। ये फोन इन कार्यक्रम है और इसमें आज का विषय रहेगा मॉनसून हेल्थ और स्पेशल, और साथ ही इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर विपिन कथोरिया। दोपहर 2:02 पर स्वाति गुप्ता आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे लाइव रेडियो कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें श्वेता शर्मा आपके साथ होंगी। आज इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, एम्स न्यू दिल्ली। शाम 4:02 पर युवाओं का कार्यक्रम अल्फा जैन आप सुन सकते हैं, इस कार्यक्रम में स्वाति गुप्ता और माला नेगी आपके साथ रहेंगी। सुबह शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स, जिसमें श्वेता शर्मा आपके साथ रहेंगी। इस कार्यक्रम में आप दिल्ली जगत की सभी जानकारियां सुन सकते हैं, साथ ही गीत आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Yes, a very good morning to our listeners. Hope you guys had a blessed time listening to our dewdrops that was earlier. And now it's time for your Western music. Good morning, Naglen, which are you, Tim? And yes, the

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8.5

0: दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने

0: जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स की 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

हाँ जी बैलस न जमने आने दिया गेट होने ले दुम थ्री लगा मुझे बढ़िया हो शे दो ही जुनून मुझे जवान लगा वास्ते और आज ये प्रोग्राम दो आसे एक ही का लगा यानी एक दा आवाज लगा गाना खान होने वो और आज लगा आवाज तो आसे उले मुझे जवान और हम यान भावी था कि वो किले मुझे जवान लगा आवाज लो ऐसे गुले हमें एक दा छोटा छोटा सा किस्सा कोई दी वो

हाँ जी बे लसन सामान के ठोने ले जब वी मेट लगा मूवी ब्रदर्शी डुम से ही आर्य रिहोनिया से एक ही कलाकार लगा हिंदी फिल्म कान प्रोग्राम मोहित चौहान लगा आवाज दे आरामी खान लगा प्रोग्राम सेस गुरुले समय पुंचे जैसे तुम अमी यदि अपनी खान लगा मैसेजेस खान बात से जल्दी लुई ना बुरी दिया वो यदि लिखी ना बताई दिया से गुड मॉर्निंग हेलो गुना एक ता एनोनिमस राइटर नाम तो दिया ना लिवी लिखी ना बताई दिया निमरी खुशी आसे हिरेंद्र दास दाई गुदाले आसाम ब्रा लिखे आसे आरोग ऐसे वेरी गुड मॉर्निंग हिंदी प्रोग्राम शो एस एम एस लाइन की तरह से गुना जनाई दिया स्नेगी तो हाजी कोनिशना अमी खान लगा एस एम एस प्रोग्राम तो 11:30 शुरू कर लिया से अमी खान सब एक ही साथ जुड़ी ना तो प्रोग्राम दे शामिल दी वो गुना अपनी खान की भी अगुआ अनुरोध कर से एंड या सो तो टाइम दिया अपनी जी हुई भी लिखी ना पढ़ाई दी भी हिट हंड्रेड दस अगु यदि रोकोविले मेटा दाई भी लिखी ना पढ़ाई से मॉर्निंग आजे ड्यू टू वेरी हॉट वेदर इन डिमापुर इन चुमुकी टीमा Dimapur and Chumukitima, starting from morning, the sun rays reflects on a place like fire. Kunalika say, ah, Rokovile meta. Yes, Dimapur Goram Tagibo, Ajito Kohima Dibi Ektam Goramase, Sando Ektam Gara Seade. Hopefully, Ajila Dinpura, Nikai Honegi Guna, Mula Biswas Asi, Olibi, you never know. Golop Taginado, Jorsi Parish, Giribunishnabia say. And yadi ekta anonymous writer likhi ase good morning guna aro koi ase Spain support kore ase guna to yeah listener thank you likhina badhai dia nimide go next time apnala naam bi janai dile beshi khushi ase holi bi ami bi Spain ke root kore ase yade to let's hope for the best all right Nakutu from Likina Bathase Choppy Brothers, Etamant and Atto Kwasi, good morning to all the listeners. Today we are working and enjoying the show and have a great day ahead. Choppy Brothers, as always, Amnihan Lanam Dikina Kushia Se Ako Amnihan Iniga Din Korom Holibil, Gam Mondi Nakurakane Bishi Kushi, Ako Likina Bathai Tagibi, Aro FM Dhunibi, Kilimani FM Hunedam Di, Gambi, Najanina Kotom Hui Jaboli Ase. Alright, Sachin Lorengma from Gabi Anglong, Taiko Ase. Yati to panikiri asiho gana bi bhal bhal black

हाँ जी लवली जी, यह दूसरा गीत बजा दिया से एडिटर राज श्रीला मूवी में दिया से गिला नाम से ओ माय लव सुनो निखाम और शिरा गोशल का आवाज दे और एडिटर गीत तो मांग ना लिखे से बिली फ्रॉम सनी बोटो बिली वेरी गुड मॉर्निंग टू यू स्वागत करे से प्रोग्राम दे और गीत तो मांग ना निशना बजा दिया से होने की एंजॉय करिए।

हाँ जी लवली जिद्या को दूसरा गेट बजाई दिया से और तो बाजिका लगा मूवी बढ़िया से गेट लाना हमसे ये गाली गाली आगे और तो कुमार सानो और अनु मालिक खरस लगा हुआ से दिया से एक गेट तो मांगुना लिखे से रोगवेले मेहता फ्रॉम फोर्ट माइल डिबुबा जम्मू के टीम और तई तो गेट डेडिकेट कर दी मन जैसे दू अमाल बसुमात्री सुनीता बसुमात्री विमल बसुमात्री राकेश हिदेन्द्र दास रमेश बत्रो सुनील बांसो दिबाशीष हजारिका जोगेन्द्र रंगवी जुबागी जमीर अखोजो छबी ब्रदर्स अविनाश डाली बैगन मोंडा मंदिरा सिगारी रंगबर कसीम अली चंद्र दिमोन भी राजेश गुमार एंड ऑल द जज रोकोविले मेट एज ऑलवेज लवली टू हियर फ्रॉम यू आगो लिखी ना पढ़ाई जाने मेरी खुशी से होनी ना एंजॉय करवी

0: हाँ जी भैया, लिसनर्स, 9 बजे, नॉट 9 बजे, 12 बजे 30 मिनट पंक्चुअली समय आई जैसे। यस, टाइम तो बेसि जल्दी ना जानी ना जाए से हम तो सूरी बही ना यदि 9 बजे निचने लगे से। एनी हो, अपनी खान होने से यदि एस एम एस रिक्वेस्ट प्रोग्राम हिंदी फिल्म खान प्रोग्राम दे और मुझे अपनी खान लगा जे रंग टी कनिश्ना हम तो एकदम मस्ती बार अपनी गेट होने से आगो अपनी वाला गेट खान मांग गोया खान तो बजाय दी बोले से। बट इतु ना बजा कि दे हम खान छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लोबो और इतु बस दे न्यूज हेडलाइंस आने दी वो दैट इज एट 12:30 नो 12 बजे 30 मिनट दे আর এটা পাশে দিয়ে আগে আপনি গান লেখা প্রোগ্রাম দিয়ে গেট খান বজাই দিব। তো আপনি সব জুড়ি না হয়ে থাকিব, আমি জলদি সে আপনি গান লগতে ইয়াদে সামিল দিয়ে কিনা বই থাকিব আর লগ পাবো। তো ইয়া, এনজয় দ্য মিউজিক অ্যান্ড অর ইউ শুড জাস্ট কিপ টিউনিং ইন, হনি থাকিবে আকো মিউজিক এনজয় করলে সময় পৌঁছে যাব রাইট আফটার দিস কমার্শিয়াল ব্রেক অ্যান্ড নিউজ হেডলাইন্স।
1: নই কার জিতনে কা মৌকা, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट, ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: ओ तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: एफएम ट्रैकोबैन
5: 103 MHz,
4: news, music and entertainment.
5: This is FM Tracker.
4: FM 103 MHz.
0: This is Agashwani Kohima, the news headlines at 12:30 noon. Nagaland government issues austerity advisory directing all departments, boards, corporations, government institutions, state public sector undertakings to rationalize expenditure and conserve resources. On the occasion of World Youth Skills Day, Nagaland Skill and Entrepreneurship Development Mission launches Japanese Language Center in Kohima as a pilot project. 50 trainees will be trained in Japanese language from next week. Undersecretary and Project Manager, Nagaland Skill and Entrepreneurship Development Mission, IDEN, Vinit Gumar, calls upon all to come together to create a new chart, new path for Nagaland, where the youth are empowered to take bold decisions to contribute to the state's economy and take the state forward. Undersecretary and Project Manager, Nagaland Skill and Entrepreneurship Development Mission, IDEN, Vinit Gumar, says Nagaland Japan Connect will be held in Dimapur next month. Also says the relationship between Nagaland and the Japanese government is progressing very fast on various sector. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement covers all 12 major service sectors and 137 subsectors, providing Indian businesses with simplified trade, stronger market access and a more conducive environment to expand globally. Industry bodies describes India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Union Home Ministry designates new special court for the trial of offences investigated by the National Investigation Agency across Maharashtra. Government releases the country's first trial index of services production for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. Vice President C.P. Radhakrishnan releases the book The Voice of Justice, Justice Gavai Speaks at Upashtrapati Bhavan. The book offers a collection of speeches, lectures and reflections of former Chief Justice of India, Justice Bhushan Ramkrishna Gavai. Konyak Union urges Nagaland government to resolve long-standing border disputes with Assam before implementing a memorandum of understanding on oil exploration signed between the two states in New Delhi on June 11, 2026, in the presence of the Union Home Minister. An unruly mob attacked an Assam Rifles camp in Manipur's Sinabadi town, resorting to stone belting, arson and vandalism in an apparent attempt to obstruct a security operation against armed militants.

हाँ जी लवलीज, जल्दी से यदि आपको दूसरा गीत बजाय दिया से तो मैसेज तो लिखना बताया से गीत तो मांग करना। वेल दिस इज फ्रॉम कत्सोर हुस्वान शोंटो चौजोपा और ताई मांग करे से शोलेला मूवी ब्राई ये दोस्ते लगा गाना और किशोर कुमार एंड मना दे लगा वासे दिया से ये तो गीत ताई डेडिकेट कर दिया से टू नियन ब्रदर्स Bonyenyen, Dazunyen, Vetsoyenyen, Zale, Zasele, Nyen, Vetsoyenyen, Dobonyenyen, Vesorokonyen, Vekosanyen, and Sanatso, Totsura, Razusie, Koto, Lepo, Nyen, Vezoto, Aru, Vitaho Nien. Alright, so all the Nien brothers there, thank you so much for writing to us. And amya sob itu gate honi na enjoy groovy. I hope my amya land nam to tixi pronounce kushi. If not, amya rectify group power wa amike. Anywho, enjoy the music and have a great time.

नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये समझौता व्यापार और निवेश के लिए नए आयाम खोलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए गए अपराधों के ट्रायल के लिए एक विशेष न्यायालय गठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में मौसम के महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान है। इससे कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ की संभावना है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। और अंत में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला होगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। मैं आपके साथ कंचन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं मानसून के आते ही बहुत ही स्वस्थ होंगे आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ और बच्चों के साथ, और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक। वैसे मानसून में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, बारिश की बूंदें, हरियाली, मानसून से जुड़े तरह तरह के पकवान, त्यौहार। लेकिन मानसून आते ही सेहत से जुड़े चैलेंजेस भी बहुत अधिक होते हैं और उनमें से एक है डेंगू। और डेंगू का नाम सुनते ही हम सबको डर लगने लगता है, तो आज मानसून में डेंगू और दूसरे तरह के बुखार में कैसे सुरक्षित रहें, इसी पर बात होगी। और हमारे खास मेहमान हैं स्टूडियो में डॉक्टर विपिन कथूरिया, आप पैथोलॉजिस्ट हैं और एफएम रेनबो के आज के खास मेहमान। सर, एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सर, जब डेंगू की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं डर लगने लगता है, तो डेंगू का नाम सुनते ही सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आखिर डेंगू के कारण क्या हैं?
1: डेंगू के कारण, पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। डेंगू के कारण बहुत सारे हैं। बेसिकली डेंगू ये एक वायरस इलनेस है जो कि एक मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, और ये जनरली मॉनसून और रेनी सीजन में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि मॉनसून और रेनी सीजन इसके ग्रो करने के, उसको ब्रीड करने के लिए, इसकी ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। बेसिकली अपने को इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आस पास पानी इकट्ठा ना होने दें, स्टेगनेंट वाटर, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं उनके जो लिड्स होते हैं उन्हें कभी भी ओपन मत रखें, उन्हें क्लोज रखें। जो ऊपर वाटर है, जो हमारे डेजर्ट कूलर्स हैं उनको हमेशा क्लीन रखें, वीकली उन्हें क्लीन करते रहें। घर में मॉस्किटो रिपेलेंट्स प्रॉपरली यूज़ करें रेनी और मॉनसून सीजन में, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें जितना हो सकता है, फुल स्लीव्स कपड़े डालें घर में रेनी मॉनसून सीजन में, और बच्चों को फुल स्लीव्स, बच्चों को भी फुल स्लीव्स, और मतलब कोई भी हाफ स्लीव्स कपड़ा ना दें, फुल स्लीव्स कपड़ा उनको जरूर पहना के रखें।
0: जी दोस्तों, तो अगर आप भी सर से कुछ जानना चाहते हैं डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में या वायरल बुखार के बारे में, तो जुड़ जाइए एफएम रेनबो के साथ और फोन मिलाइए। हमारे फोन नंबर से 2342-1080 और दूसरा नंबर है 2342-1084। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9868107070। मैं आपके साथ कंचन और ये है आपका एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया और आज बात हो रही है डेंगू और दूसरे तरह की जो बुखार इस मौसम में होते हैं। सर, डेंगू की बात आती है तो डर लगता है और दूसरे तरह के बुखार जो होते हैं ना वो भी बहुत तकलीफ देने वाले होते हैं, तो कैसे पता चले किसी को कि डेंगू है या फिर वायरल है या फिर मलेरिया है?
1: पहली बात तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। अगर रेनी मॉनसून सीज़न आता है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई इलनेस ना हो या कोई भी ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी हो जाती है तो इसके लिए हम कैसे इसको डायग्नोज करें या कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसके लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे आइडिया होता है कि हमें क्या वायरल इन्फेक्शन है या डेंगू है क्या मलेरिया है। तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है। डेंगू में जनरली प्लेटलेट काउंट ज़्यादा लो होने लग जाता है। अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना होता है इनको।
0: जी, अगर किसी को डेंगू हो जाए तो सबसे पहला जो है वो उनके परिजनों का क्या कर्तव्य होता है, क्या करें? बहुत जोर से थरथराहट होती है, घबराहट होती है।
1: डेंगू में जनरली हाई फीवर, बहुत हाई फीवर होने के चांसेस रहते हैं, मसल पेन, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, आई के रीजन में दर्द होने लग जाता है, हेडेक्स बहुत होते हैं, वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली जो भी गार्जियन है या पेरेंट्स हैं किसी के, तो उन्हें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एक तो पैनिक नहीं होना और दूसरा उन्हें हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, उन्हें फ्लूड देते रहना है। बेसिकली डेंगू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्लूड मैनेजमेंट की वजह से होती है, तो जितना हो सकता है हमें उनको हाइड्रेटेड रखना है, मेडिकल जो अपने फिजिशियन है मेडिकल की कंसल्ट करना है, उनसे सुपरवाइज करना है, उनसे डिस्कस करनी है चीजें।
0: जी सर, घबराना नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और देखते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो जी, इनसे हमारा संपर्क। हेलो जी, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप फोन मिलाएं तो लाइन छोड़कर जाए नहीं, उससे परेशानी होती है। आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गानों की फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ डॉक्टर विपिन कथूरिया हैं। सर, वायरल जब हो जाता है तो

0: उसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि अभी मौसम भी वायरल का है, तो इसमें क्या किया जाए?
1: वायरल में भी फीवर, बोन वायरल में फीवर होता है, जॉइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं। अपने तरफ से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें, मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। हाइड्रेटेड रहें, पानी जितना ज़्यादा ज़्यादा पी सकते हैं उतना अच्छा है बॉडी के लिए। कोई भी वायरल फीवर है तो अपने फ्लूड को मेंटेन रखें, फ्लूड अंदर बैलेंस को मेंटेन रखें। सिम्टम्स लगभग वायरल फीवर में सबके सेम आते हैं, बट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर में आपको उनसे चला लेनी चाहिए।
0: जी दोस्तों, मानसून आते ही सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे ही घर के किसी कोने में, छत पर या हमारे बगीचे में ही मच्छर जो है पनपते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ये छोटा सा मच्छर जो है ना, कितना खतरनाक हो सकता है, कितनी तकलीफ दे सकता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सर, जब किसी को डेंगू हो जाए तो कैसे उसकी देखभाल करें?
1: डेंगू के लिए देखभाल सबसे पहले, मैंने पहले ही बताया उनका जो वाइटल्स हैं, वाइटल्स में जैसे बीपी हो गया, उनका बीपी अगर स्टेबल है, फीवर अगर उनका राइज नहीं हो रहा और फ्लूड अगर प्रॉपरली आप उनको फ्लूड दे रहे हो, तो ये अगर ये तीन चीज मेंटेन है तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। इन तीन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए कि उसका फ्लूड मेंटेन रहना चाहिए। बेसिकली डेंगू में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लूड इम्बैलेंस के। डिहाइड्रेटेड नहीं रहना चाहिए पेशेंट, शुड बी हाइड्रेटेड होना चाहिए पेशेंट। जितना आप हाइड्रेटेड, जितना आप उनको फ्लूड देंगे अकॉर्डिंग उसके बॉडी वेट के हिसाब से हमें उसको फ्लूड देते रहना चाहिए।
0: जी सर, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, आप अपना नाम बताएं और सर से सवाल पूछें।
2: अंशु कुमार मैम, नमस्कार। सर को भी मेरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
0: अपना सवाल बताएं।
2: हमारा ये सवाल है कि अगर बुखार से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, और अगर डेंगू किसी को हो जाए तो उसकी देखभाल कैसे हो सकती है?
1: बुखार से
0: कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और किसी
2: हाँ।
0: को जी,
1: और
0: कैसे देखभाल करें डेंगू हो जाए तो?
1: डेंगू हो जाए तो बुखार से तो सुरक्षित रहने के लिए हमें उसको बुखार की दवा देनी चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, आसपास जो आपके डॉक्टर्स हों जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो उनसे आप डिस्कस करो। और अगर उनके जो बुखार के अलावा कोई ज़्यादा अगर उनको और परेशानी नहीं है या ठीक सिर्फ बुखार ही बुखार है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हमें उनको घर पर सुपरवाइज कर सकते हो आप, उनको डॉक्टर से डिस्कस करके। बस उन्हें फ्लूड मेंटेन रखना है, आप उनको फ्लूड जितना मात्रा में पानी दे सकते हो उनको पानी देना है, कोकोनट वाटर देना है, सूप दे सकते हो, जूसेस दे सकते हो अगर वो जूसेस ले सकते हैं, ORS देना है उनको। तो घर पे रह के मेन जो मैनेजमेंट है उनका हाइड्रेशन का है, पानी उनको जितना ज़्यादा आप देंगे उतना अच्छा रहेगा। वाइटल्स अगर बीपी वगैरह उनका स्टेबल है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बुखार तो इसमें बहुत तेज बुखार आता है, बुखार के लिए जो दवाई होती है वो दवाई देनी है।
0: जी, एक दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, प्लीज आप लोग लाइन छोड़कर कहीं ना जाएं, इससे बहुत अधिक परेशानी होती है। और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज बात हो रही है डेंगू की। सर, अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार है और वो पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाए, तो उस स्थिति में किस तरह से निपटने की जरूरत है?
1: बेहोश हो जाए तो अगर उसका अगर पेशेंट का बीपी का लेवल भी डाउन है और अदर प्रॉब्लम्स भी आ रही है, उनको पेन अपडमन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, उनको हेडेक भी सीवियर है, अगर कहीं से गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ये भी सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, अगर ये हैं तो हमें उसको हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए उस पेशेंट को तुरंत।
0: जी,
1: अगर फीवर डाउन नहीं जा रहा तो हमें हॉस्पिटलाइज होने कराना चाहिए।
0: जी, पैंथर तोमर जी पूछ रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया टाइफाइड के लक्षण में क्या अंतर है? डेंगू होने पर कई लोग कीवी पपीते के पत्तों का रस और नारियल पानी पीने लगते हैं, क्या ये सही है? और क्या किसी व्यक्ति को एक बार होने के बाद दोबारा भी डेंगू हो सकता है? तोमर जी का ये सवाल है।
1: डेंगू के जो टोटल टाइप्स होते हैं 4 सब टाइप्स होते हैं इनके, तो डेंगू 4 बार होने के चांसेस हो सकते हैं। एक बार जब होता है तो उसकी एंटीबॉडीज बन जाती है, बट जरूरी नहीं है कि जिसकी जो एक एंटीबॉडी बनी है वो उसकी 4 सब टाइप्स के लिए इफेक्टिव है, तो दोबारा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पपाया कीवी और कोकोनट वाटर, पपाया का ऐसे कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई स्टडी तो नहीं है कि इससे बेनिफिट होता है डेंगू पेशेंट्स में। कोकोनट वाटर ORS اور آپ سوپس یا اگر آپ فٹ ہیں تو فروٹ جوسز لے سکتے ہیں. تو یہ سب تو ایز اے میڈیکل سپرویژن میں آپ لے سکتے ہو. یہ افیکٹو ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے, ڈینگی پیشنٹ میں ہائیڈریشن مینٹین کرنے کے لیے.
0: جی سر, ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو
3: ہلو
0: ہلو جی نمستے, آپ اپنا نام بتائیں اور سر سے اپنا سوال پوچھیں.
3: میں محمد قاسم بول رہا ہوں دلی سے.
0: جی محمد قاسم صاحب
3: نمسکار.
1: نمسکار جی.
3: سر مجھے پوچھنا یہ ہے, جیسے آپ نے وائرل بخاروں کی بات کی کہ ان کے لیب سے ڈائگنوز کرانا چاہیے, تو کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بخاروں میں, جیسے ڈینگی میں کون سی جانچ ہوتی ہے, ملیریا میں, ٹائیفائڈ میں کون کون سی جانچ کی جاتی ہے؟
1: ڈینگی میں جب آپ کو بخار آنا شروع ہو گیا, بخار آنے کے دو سے تین دن کے بعد آپ کو ایک NS1 اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروانا چاہیے, اور ایک CBC کرانا چاہیے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرانا چاہیے. یہ دو جب آپ کے بخار کے لکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے دو تین دن کے بعد ہمیں یہ ٹیسٹ کرانے چاہیے, اور پانچ دن کے بعد بھی ایک ٹیسٹ کرا سکتے ہو آپ, اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے IgM, وہ بھی آپ کروا سکتے ہو. یہ ڈینگی میں آپ کو جنرلی ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں. کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی کروانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے اس میں, وہ چیک کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کا.
0: دوستو موسم ہے مانسون,
3: اور ٹائیفائڈ میں, ٹائیفائڈ اور ملیریا وغیرہ,
1: ٹائیفائڈ میں بھی ٹائیفائڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے IgM IgG, اس کا بھی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے, وہ بھی ایک ٹائیفائڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ملیریا کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پلازموڈیم فیلسیفیرم کا, اور ان کا وہ بھی آپ کو, ملیریا کے الگ ٹیسٹ ہیں اور ٹائیفائڈ کے الگ ٹیسٹ ہیں. اس میں CBC دونوں میں آپ کو کروانا ہوگا, دونوں میں CBC آپ کو ضرور کروانا ہوگا. اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے
0: جی. محمد قاسم صاحب, تو آپ کو اپنے سوالوں کا جو اتر ہے وہ مل گیا ہوگا. اور دوستو موسم بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بیماریوں سے لڑنے کی بھی ایک جو ہے نا جد و جہد ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں نا آپ کے ساتھ FM رینبو پر, تو آپ اپنے سوال FM رینبو تک پہنچا سکتے ہیں 9868107070 پر, اور فون لائن ملا سکتے ہیں 2342-1080, دوسرا نمبر 2342-1084 میں آپ کے ساتھ کنچن اور سر کی ہی پسند کے بہت ہی پیارے پیارے, بہت ہی میٹھے میٹھے گیت ہم سنواتے رہیں گے FM رینبو پر, دل سے دل تک.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया। और आज बात हो रही है डेंगू जैसे बुखार जो है ना, जब परेशान करते हैं तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं डेंगू जैसी बीमारियों से। सर, जब किसी को डेंगू हो जाए, इसके बारे में तो हमने बात की, लेकिन क्या बच्चों को और बुजुर्गों को भी डेंगू हो सकता है?
3: डेंगू किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, बच्चों को, बूढ़ों को, यंग एडल्ट्स हैं उनको, प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको, किसी को भी डेंगू फीवर हो सकता है, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एज ग्रुप्स को नहीं होगा। जिनको कोमोर्बिडिटीज जैसे ज़्यादा हैं, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज या किडनी डिजीज ज़्यादा हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनमें लक्षण और ज़्यादा सीवियर आते हैं।
2: जी, और इसी से जुड़ा एक सवाल हम तक पहुंच गया है। वो किशनगंज से ये मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को डेंगू या मलेरिया होने पर क्या जोखिम हो सकते हैं और उन्हें ये कितना प्रभावित करती हैं?
3: डेंगू जो है, अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनमें जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे हाई फीवर, मसल पेन, बोन पेन्स या वोमिटिंग या ब्लीडिंग्स होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी इन चीज़ों से इफेक्टेड हों, फीवर उनका डाउन ना जाए, वोमिटिंग कम ना हो उनकी, पेन अपडोमेन में बहुत स्टार्ट तेज हो जाए, ब्लीडिंग्स भी ऐसे पेशेंट को हो सकती है, ज़्यादा हो जाए गम से, नोज से, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, ऐसे रेस्टलेसनेस ज़्यादा हो सकती है, वीकनेस बहुत रहती है ऐसे पेशेंट्स में, मेनली रेस्टलेसनेस और वीकनेस ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स के। जो हेल्दी पर्सन है उससे डिफरेंट ये रहेगा कि वो रेस्टलेस ज़्यादा रहेंगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी ऐसे पेशेंट्स में।
2: जी,
3: और सिम्टम्स जो भी सिम्टम्स हैं वो सीवियर ज़्यादा रहेंगे।
2: सर, डेंगू की बात जब आती है तो एक बुखार और होता है चिकनगुनिया, जो कि बहुत तकलीफ देह होती है, तो कैसे लक्षण, कैसे हमें लगे कि ये चिकनगुनिया है? और
3: चिकनगुनिया और डेंगू में, दोनों में फीवर बहुत हाई रहता है, मसल पेन, जॉइंट पेन, दोनों में यही दोनों के जनरल सिम्टम्स सारे ठीक सेम रहते हैं। आँखों में थोड़ा, चिकनगुनिया की आँखों पर थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा डालता है वो, बाकी ये टेस्ट करा के ही आइडिया हो सकता है कि दोनों में क्या, कि चिकनगुनिया है कि डेंगू है, बट जनरली सिम्टम्स दोनों के सेम रहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये सेम मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो के से बाइट से ही या उसके काटने की वजह से ही होता है, और ये थोड़ा रेनी मॉनसून सीजन में ही इफेक्ट ज़्यादा करते हैं।
2: सर, अपने घर की साफ सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, घर को चमका लेते हैं, सजा लेते हैं, लेकिन घर के कोने कोने में कैसे ध्यान रखा जाए कि पानी का जमाव तो नहीं?
3: ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पानी जितना हो सके इकट्ठा ना हो, बारिश के टाइम पे तो खासकर साफ पानी में, और अपने डेजर्ट कूलर्स को रेगुलरली क्लीन करें रेनी मॉनसून सीजन में, पोर्ट्स हैं उनको भी क्लीन रखें, ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो वहाँ पे, रिपेलेंट्स यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, नेट्स यूज़ करें, फुल स्लीव्स हो सके घर में फुल स्लीव्स क्लोथ्स डालें, क्योंकि जो डेंगू का जो मॉस्किटो है ये ओनली मॉर्निंग से आफ्टरनून में थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा रहता है बेसिकली।
2: जी सर, कुछ लोग अपने आप दवाई खाने लग जाते हैं, बुखार की भी दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खाते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है?
3: बहुत खतरनाक है, बिना सुपरविज़, बिना मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस के हमें कोई भी ऐसी मेडिकेशंस नहीं खानी चाहिए, और एंटीबायोटिक्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। सर, ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक तब देनी होती है जब कोई बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट किया हो, ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, एंटीबायोटिक तब दी जाती जब हमारी इन्फेक्शंस बढ़ गई है, उसमें और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस डेंगू के साथ साथ ऐड हो गई है, तब हमें एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए, उससे पहले हमें एंटीबायोटिक नहीं शुरू करनी चाहिए। वायरल फीवर के लिए वायरल, देयर इज नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स इन वायरल फीवर।
2: सर, तो डेंगू पर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपकी पसंद की बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे,

0: जी बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं दोस्तों कि हम स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, लेकिन मॉनसून आते ही कई बीमारियां जो है ना हमें घेरती चली जाती हैं, और उनमें से एक है डेंगू, जिसका सबसे अधिक खतरा जो है वो मंडराता रहता है। किसी भी उम्र के लोग हों, वो डेंगू से बचने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार हम शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मच्छर कब हमें परेशान कर देना ये पता नहीं चलता। सर, जब डेंगू की बात आती है तो अगर किसी माँ को, यानी माँ अगर वो बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, और किसी को हो जाए डेंगू, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें होती हैं?
1: मुश्किलें हो सकती हैं, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो अगर उनको होता है तो वही सेम ट्रीटमेंट, वही सेम मेडिकल मैनेजमेंट, वही सेम रहता है अंडर आपके मेडिकल जो सुपरविजर, जो आपके डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करके सेम ट्रीटमेंट रहता है। सेम ट्रीटमेंट में कि आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, फीवर हाई नहीं होने देना, फीवर कंट्रोल करना है, वाइटल्स को स्टेबल रखना है, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर होता है तो सेम सिम्टम्स रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो सकता है कि थोड़ा सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं, बट कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। और कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो उनको भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं अपने बच्चों को, इसमें कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है।
0: छोटा शिशु है, 1 महीने का 2 महीने का, उसे अगर हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: अपने जो बच्चों के, जो उनके पीडियाट्रिक्स, जो उनके बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उनके सुपरविजन में सेम ट्रीटमेंट, जो सेम मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट है, सेम है इनका सब, चाहे बच्चों का हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज का हो, चाहे यंग एडल्ट्स का हो, बट अपने अंडर सुपरविजन ऑफ देयर डॉक्टर।
0: जी, और एक सवाल आया है किशनगंज से पैंथर तोमर जी का, वो कहते हैं कि क्या डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियों के टीके उपलब्ध हो चुके हैं? यदि उपलब्ध हो चुके हैं तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं ये टीके?
1: कुछ कंट्रीज में वैक्सीन डेंगू की अभी आ गई है, बट इंडिया में अभी अंडर ट्रायल है इसका, इस पर अभी वर्क चल रहा है, बट अभी देना या लगाना अभी शुरू अभी नहीं हुआ है, बट अदर कंट्रीज में देयर आर वैक्सीन्स।
0: जी, कई बार देखा गया कि कुछ लोगों को बहुत अधिक उल्टियां होने लगती हैं बुखार में चाहे, लेकिन वो डेंगू नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और क्योंकि लोग बहुत घबरा जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अगर बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और कुछ खाना ओवर नहीं ले पा रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑरली मुंह से अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पेशेंट को आईवी फ्लूड, आईवी के थ्रू इंट्रावीनसली हमें उसको देना चाहिए। उसके लिए उसके एडमिशन, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो।
0: जी सर, कई बार हम देखते हैं कि डेंगू जो है ना बिल्कुल फैलती चली गई मॉनसून में, खासकर जैसे हमने 2010 में देखा था दिल्ली में, हर एक दूसरे घर में डेंगू या चिकनगुनिया के पेशेंट थे, तो ऐसा क्यों हो जाता है?
1: ये इसलिए हो रहा है रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, इतना अर्बनाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स के लिए एक रेजिस्टेंस आ गया है, और फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो ये भी एक रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से डेंगू बढ़ता जा रहा है बेसिकली।
0: जी,
1: इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से ट्रांसपोर्ट होके दैट कम्स बेसिकली, अर्बनाइजेशन इतनी है, पानी इकट्ठा हो रहा है चारों तरफ, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कुछ लोग रेजिस्टेंस हो रहे हैं इंसेक्टिसाइड की, रेजिस्टेंस बहुत हो रही है, इस वजह से भी चांसेस हैं कि बढ़ रहे हैं इसके केसेस।
0: जी दोस्तों, हम बहुत सारी बातें करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन डॉक्टर साहब की ही पसंद के गाने हम सुनवाते रहेंगे FM रेनबो पर, तो जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया, और बहुत खुश हो रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
0: जी, जब आपकी पसंद के गीत कोई दूसरा प्ले करे तो कितनी
1: बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच
0: जी।
1: मेरी सारे जितने मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे आपने सारे आज प्ले करे
0: जी। सर डेंगू पर बात हो रही है, तो डेंगू जो है उसको रिकवर होने में कितना समय लगता है किसी पेशेंट को डेंगू से?
1: डेंगू अगर आपको होता है तो जनरली 14 डेज तक हमें ध्यान रखना होता है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे। जो स्टार्टिंग में जब आता है तो स्टार्टिंग में फीवर 1 से लेकर 3-4 दिन तक फीवर रहने के चांस रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड डे के बाद जो टाइम होता है 3rd to 7th day का, वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, और 7th to 10th day होता है वो रिकवरी फेस होता है बेसिकली। बट कुछ लोगों में 14 डेज तक भी ये इसके साइन सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, बट जनरली 14 डेज तक हमें इसका ध्यान रखना होता है
0: जी। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो गर्भ धारण की हुई है और बच्चे के रीढ़ में जो है गांठ है, तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि अभी बात हो रही है डेंगू की।
1: हाँ,
0: तो
1: मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने जो आसपास जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट करिए इसके लिए।
0: जी रंजीत कुमार जी, आज बात हो रही है डेंगू मलेरिया और मौसमी बुखारों की। सर एक बार अगर डेंगू किसी को हो जाए तो क्या बार बार होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डर तो बहुत लगने लगता है?
1: डेंगू की 4 सब टाइप्स होती है, मैंने अभी बात हुई थी मेरी, तो 4 बार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 4 अलग अलग सब टाइप्स होती हैं। एक बार जब होता है तो उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं बॉडी के अंदर, बट वो चारों स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव नहीं होती, वो तो होने के चांसेस रह सकते हैं
0: जी। और जब किसी भी तरह के मौसमी बुखार या डेंगू से उभर जाए तो कैसे अपनी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि कमजोरी तो बहुत अधिक हो जाती है?
1: गुड, अगर आपको कमजोरी वीकनेस है अगर फिर आफ्टर डेंगू रह सकती है, क्योंकि डेंगू में बहुत इम्यूनिटी लो होने के चांसेस रहते हैं। स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए थोड़े दिन तक। अच्छा, हेल्दी फूड लेना चाहिए, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, प्रोटीनेशियस मील जो थोड़ा हाई लेना चाहिए, थोड़ा लाइट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा लाइट फूड लेते रहें, हेल्दी फ्रूट्स लेते रहें, फ्रूट जूसेस लें अगर आपको अगर कोई मेडिकल कोई डायबिटिक प्रॉब्लम नहीं है तो
0: जी। और अगर किसी छोटे बच्चे को, स्कूल जाते हुए बच्चे को डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए तो फिर कैसे देखभाल करनी चाहिए?
1: देखभाल जैसा मैंने पहले बताया कि हमें उनको ध्यान रखना है कि उनके जो फीवर है उनका राइज नहीं होना चाहिए, फ्लूड की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, ज़्यादा फ्लूड देते रहें, फीवर राइज नहीं होना चाहिए उनके। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट आराम से घर रह के देख सकते हैं। अगर सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं या कुछ क्रिटिकली लगता है कि भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खा नहीं सकते, इतना ज़्यादा वीकनेस आ गया है, तब हमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है। इसमें कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है।
0: सर शरीर पर रैशेस भी दिखाई देने लगते हैं, वो किस तरह के बुखार में दिखाई देते हैं?
1: वायरल फीवर में जनरली रैशेस हो जाते हैं, बट डेंगू में भी होने के चांसेस रहते हैं। सब में ही रहते हैं बट कुछ केसेस में नहीं भी आते, बट मैक्सिमम केसेस में रैशेस आते ही आते हैं बेसिकली, वायरल फीवर्स में रैशेस आने लगते हैं
0: जी। और सर चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि बुखार एक ऐसी चीजें हैं ना जो वो तोड़ देती हैं, कमजोर कर देती हैं, फिर लगता है कि, और थोड़ा डर भी लगने लगता है कि कहीं हम चपेट में ना आ जाएं, तो किस तरह से अपनी देखभाल करें, अपने आसपास जो है किस तरह का माहौल रखें, किस तरह से साफ सफाई रखें?
1: मैं मैसेज देना चाहूंगा कि डोंट पैनिक इफ यू हैव फीवर एंड डोंट इग्नोर इट आइदर। अर्ली डायग्नोसिस, एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन और प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग आर द कीज टू रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू
0: जी। और सर आपकी पसंद के गीत बज रहे हैं आज FM रेनबो पर, आप हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और घरेलू उपाय जो है ना वो करने लग जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। कई बार लोग घरेलू उपाय जो भी है वो उसमें उलझे रहते हैं और बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। कुछ लोग झाड़ फूक अंधविश्वास वाली चीजें जो है वो भी करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश?
1: मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ऐसा किसी भी चीजों में मत पड़िए। डेंगू का जो मेन जो ट्रीटमेंट रहता है हाइड्रेशन रहता है। हाइड्रेशन मीन्स कि आपको उसको फ्लूड देते रहना है, उसकी वेट के हिसाब से जितना हम फ्लूड उसको देते रहेंगे उसके वेट के हिसाब से वो सबसे मेन वो रहता है। फ्लूड कम नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। झाड़ फूस से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप फ्लूड उनको दो के रखोगे उसके वेट के हिसाब से दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और फीवर को नहीं बढ़ने देना, फीवर बढ़ता है तो वायरल लोड इंक्रीज होता है, तो फीवर को नहीं बढ़ने देना हमें। बाकी झाड़ फूस कुछ नहीं है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है, सिंपल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी।
0: सर प्लेटलेट्स अचानक बहुत कम होने लगते हैं, तो इन सब से बचने के लिए क्या कोई खास फल जो है वो उसका सेवन जरूरी
1: ऐसा कोई है? ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई फल तो नहीं है कि हमें वो फल देना चाहिए क्योंकि ऐसा साइंस कहती है, बट जैसे पपाया जैसे बोलते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन कुछ भी नहीं है ऐसा प्लेटलेट इससे बढ़ जाएगा या प्लेटलेट कम हो जाएगा। बट ऐसा जनरली फ्लूड मेंटेन रखना, आपको जितना फ्लूड ओवर दे सकते हो आप फ्लूड मेंटेन रखना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेंगू।
0: जी सर, लोग बातचीत में कहते हैं कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें खून पानी हो जाता है, तो क्या ये सचमुच सही है?
1: नहीं, खून पानी का तो मैंने ऐसा कभी डिस्कशन आया नहीं मेरे सामने, बट प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है इसलिए थोड़ा सा लोग घबराते हैं, बट प्लेटलेट काउंट कम होना कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लेटलेट काउंट घबराने से कम होने से कोई ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फ्लूड कम होता है बॉडी के अंदर, प्लाज्मा लीकेज होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए कम से नोज से, यूरिन आउटपुट कम हो जाए बॉडी का, यूरिन कम आउटपुट कम रहे बॉडी का, तब एक ये मेजर डरने वाली बात होती है। पानी कम, पानी खून का कोई ऐसा वो नहीं है, बट बॉडी में फ्लूड अधिकतम मात्रा में रहना चाहिए।
0: जी सर, अभी अभी एक मैसेज आया है कि मेरी माँ जिन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं और उन्हें डेंगू हो गया है, क्या किया जाए ऐसे में?
1: उनको आप उनके वाइटल्स जो उनका बीपी है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, उनका फीवर तो नहीं है उनको देखते रहिए, और उनका CBC टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट वो जरूर कराते रहिए, उसमें हीमेटोक्रिट होता है वो देखते रहिए रेगुलरली, हीमेटोक्रिट उनका राइज तो नहीं हो रहा, उनका प्लेटलेट काउंट कितना है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटर करिए, बीपी मॉनिटर करिए, उनका फीवर मॉनिटर करिए, उनका CBC मॉनिटर करिए, CBC में हीमेटोक्रिट मॉनिटर करिए, उनका प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करिए, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करिए। अगर स्टेबल है तो कोई ऐसी कोई वो वाली बात नहीं कि कुछ उनको प्रॉब्लम होगी या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली रिकवर भी कर जाते हैं।
0: जी सर, चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: मानसून सीजन है, मोर चांसेस, बहुत सारी इन्फेक्शंस इलनेस के होने के चांसेस हैं, डेंगू मलेरिया टाइफाइड इन्फ्लुएंजा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने आप एक तो प्रॉपर जो आपके आसपास जितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसे इकट्ठा मत होने दीजिए, अपने डेजर्ट कूलर से उनके पूरा क्लीन करिए, कोई भी पोर्ट्स वगैरह है उसमें पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स प्रॉपरली यूज़ करिए, नेट्स यूज़ करिए घर में, वो ध्यान रखिए अपना।
0: जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, लेकिन इस प्रोग्राम के ठीक बाद 2 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना स्वाति गुप्ता के साथ, और 5 बजे होगा सेटेलाइट्स श्वेता शर्मा के साथ, 6 बजे मैसेज मसाला मिक्स जिसमें प्रवीण शर्मा आपके साथ रहेंगे, और मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत अधिक ख्याल रखिए, और दीजिए मुझे विदा, जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ दिल से दिल तक, दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लागू व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पर कहा कि ये भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें कर्नाटक से मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा मानकों को बढ़ावा देने और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। आज के हम कदम में हमने जोड़ा है हमारे साथ एक और हम सफर और नाम है इनका दीक्षा शर्मा। ये हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से और साथ ही इनके पास सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली का भी एडिशनल चार्ज है। इनसे करेंगे हम आज बात। और आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026 में जो इस साल का है वो उसके ऊपर हम लोग एक विशेष तौर पे बातचीत करने जा रहे हैं इनसे। और जो विषय रहेगा वो है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। जी हाँ, आगे आने वाले भविष्य में जो भी स्किल्स काम में आने वाली हैं खासतौर पर हमारे युवाओं के लिए जो बहुत ही उपयोगी हैं उसके बारे में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचा सकें। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम।

0: चाय बड़ी है मस्त,
1: पता का चाय गजब का स्वाद।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: म्यूजिकली यॉर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और भाई जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी हम सफर बन के हमेशा हमारे साथ साथ चलती हैं, एंड ऑब्वियसली उसमें हमारी स्किल्स, हमारा करियर जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और उसका हमारी जिंदगी में इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि एक फोकस्ड एरिया की जब हम बात करते हैं तो वो होता है। आज है जी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, और ये हर साल जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार, बेहतर कार्य और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम कहते हैं यानी कि उद्यमिता, इसके लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उसे प्रदान करने के लिए जो भी जरूरी किया जाना है उसके ऊपर चर्चा करना और उसके लिए आगे का रोड मैप तैयार करना, इन सब चीजों का जो है ना काम करता है हमारा ये खास दिन। और इस दिन बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेटर्स और साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ जो है मिलकर ये चर्चा करते हैं कि किस तरह से आगे जाके इंक्लूसिव और सस्टेनेबल स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो की जानी चाहिए। एंड ऑब्वियसली ना केवल इसमें हमारे यूथ का, इसमें पॉलिसी मेकर्स का, इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि एक कौशल जो होता है, कौशल विकास, तो स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है पहले के मुकाबले, हम सभी जानते हैं। एंड ऑब्वियसली स्किल्स जो हैं आगे आने वाले समय में जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाने जा रही है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। छोटी छोटी सी तो ख्वाहिशें होती हैं हमारी, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ज़रूरत ये होती है कि हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि अपनी मर्जी की ज़िंदगी जो है ना हम जीना चाहते हैं उसे हम जी सकें। और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता कहाँ से खुलता है? ऑब्वियसली अकेडमिक से खुलता है, मगर उसके साथ साथ आजकल जो सबसे बड़ा हथियार है ना हमारे पास, इसका हथियार नहीं कहना चाहिए, मतलब जो सबसे बड़ी काबिलियत है ना, वो है स्किल्स। और आज जब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, तो इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दीक्षा शर्मा हमारे साथ हैं, आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, इनके पास है बहुत ही काम की जानकारी। आइए जानकारी की तरफ चलते हैं। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: दीक्षा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, तो इस विषय पे हमारे युवाओं के लिए क्या खास जानकारी है आपके साथ, आपके पास? और साथ ही साथ माई भारत के बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से हमारे जो श्रोता है उनको बताएं।
1: जी बिल्कुल, आज पहले तो मैं सभी जो हमारे देश के युवा हैं उन सबको संबोधित करना चाहती हूँ कि आज के स्किल्स डे पे अपने आप को डेडिकेट करिए अपने देश के लिए, जो कि विकसित भारत की ओर जा रहा है। तो अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, तकरीबन 8800 करोड़ की ये स्कीम्स हैं, जिसके अंदर हमारा स्किल इंडिया आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है, और इसके साथ साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आती है। ये सारी स्कीम्स आप ही लोगों के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप लोग इम्प्लीमेंट कर सके और आपको अच्छी जॉब्स मिल सके। अब प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि हमारे देश में 2-5% तक लोगों को ही स्किल्स प्रोवाइड हो जाती हैं, जो कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर स्किल्स हैं। अब ये प्रॉब्लम इसलिए है कि ठीक है, हमारी तरफ से भी कुछ कमियां हैं अभी, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, जो हमारी स्किल्स काउंसिल्स हैं उनमें अभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो कर रहे हैं अपनी तरफ से काम, पर आपको भी अपनी तरफ से काम करना है। वो है कि आपको एक सशक्त और एक जागरूक सिटीजन बनना है। जब आप ये एक जागरूकता की तरफ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की हैं, पर हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूं और मैं माई भारत में काम करती हूं, तो माई भारत आपका एक प्लेटफॉर्म है जो कि सारे देश के युवाओं को, हमारी सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी इंडस्ट्री को, सबको जोड़ता है। और अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो माई भारत प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मौके हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उसकी वजह से आप बहुत सारी जो सरकार की स्किल्स से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उन सबसे वंचित रह जाते हैं। स्किल्स के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि हम लोग जॉब्स की बात करेंगे, कि जॉब्स तो नहीं है, स्किल्स तो हमारे पास बहुत है, जॉब्स नहीं है। पर द प्रॉब्लम इज, ये सोचने की कोशिश करिए कि हम सिर्फ जॉब ढूंढे क्यों, जॉब सीकर क्यों बने, जॉब प्रोवाइडर बने। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, वो कहते हैं कि आइडिया आप दीजिए, साथ मैं दूंगा। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी इनोवेटिव स्कीम्स चलाई हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। वो स्टार्टअप इंडिया सिर्फ एक जुमला ही नहीं है, इसके अंदर आपको अपनी जो भी आइडियाज हैं वो लेकर आनी है। और माई भारत के अंदर इस टाइम पे हमारे पास एसोचैम का एक इन्वेस्टमेंट कनेक्ट समिट चल रहा है, उसके बाद हमारा एक ब्रिक्स समिट अभी 2026 में होगा इंडिया की चेयरमैनशिप में, उसमें भी हम बहुत सारे आइडियाज को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और इनोवेशन के तरफ भी कदम बढ़ाया है, जिसके अंदर हम लोग अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करते हैं, हमारे कॉलेजेस में हैं इनोवेटिव आइडियाज, वहां आपने लेकर आइए और सोचिए कि आपको सिर्फ जॉब नहीं लेनी, आपको दूसरों को जॉब्स प्रोवाइड भी करनी है।
0: जी आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है दीक्षा हमें दी है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स की जब हम बात करते हैं, कौशल विकास हम जानते हैं कि पहले से जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल्स का भी रोल बहुत प्रोमिनेंट होने लगा है अब आके। तो ये स्किल्स हासिल करने के लिए क्या क्या, या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगर उसमें से कुछ पे आप रोशनी डाल सकें।
1: जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें 6वीं कक्षा से ही वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया है। तो अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये आदत डालें कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिकल चीजें उस पर भी फोकस करना है, तो हमारा जो है यूथ को अच्छी जॉब्स भी मिलेंगी और वो अच्छे आइडियाज लेकर एंटरप्रेन्योर भी अच्छे बनेंगे। दूसरी है हमारी स्किल इंडिया स्कीम। स्किल इंडिया के अंदर हमारे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं और बहुत सारे सारी स्कीम्स जैसे कि मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, वो सारी स्कीम्स इसके साथ कनेक्टेड है। हमारे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, हमारी ITIs हैं, प्रधानमंत्री जी ने पीएम सेतु स्कीम लॉन्च की थी जिसमें ITIs को अपग्रेड किया गया। अब वो बहाना नहीं है कि हम ITIs में नहीं जाएंगे कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अब हमें जो है आगे बढ़ना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा जो युवा हैं वो इसमें भाग ले चुके हैं, सर्टिफिकेशन ले गए, उन्होंने प्लेसमेंट भी हासिल की है। तो मैं सभी युवाओं से ये आग्रह करना चाहूंगी कि कृपया इन स्कीम्स का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा सशक्त युवा की ओर बढ़े।
0: जी दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर जब हम इन सभी स्कीम्स की बात करते हैं तो उसमें एक सवाल सबसे पहले उठकर आता है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू जो आता है वो है फंडिंग। तो क्या इस तरह की भी जो जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम अभी आपने लिए हैं, क्या उसमें उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए किसी तरह का फंडिंग या किसी और तरीके का टेक्निकल सपोर्ट ये सब चीजें भी हैं?
1: जी, मैं बिल्कुल इसमें बात करना चाहूंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है नवाचार मंत्र। तो ये माई भारत पोर्टल पे भी अपलोड किया गया है। इसके अंदर जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आइडियाज दें, और प्रधानमंत्री ने ये वादा किया है सभी एंटरप्रेन्योर्स से कि जो भी आप आइडियाज लेके आएंगे उसके लिए हम आपको टेक्नोलॉजी, जो फंडिंग सपोर्ट है वो सब हम लोग देंगे। उसके अलावा हमारे पास स्टार्टअप इंडिया बहुत सालों से चल रहा है और उसके साथ हमने कनेक्ट किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि फिक्की और एसोचैम को, तो वो रेगुलरली सबमिट करते रहते हैं और हमारे युवा को प्रोत्साहित करते हैं कि आइए हमारे पास आइडियाज लेके आइए, पैसा और टेक्निकल सपोर्ट हम आपको देंगे।
0: जी, विश्व युवा कौशल दिवस जो कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है, इस दिन ये बहुत सी काम की जानकारी है जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा काम की है और ऐसी ही जानकारी हमने आप तक पहुंचाई आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी। दीक्षा है हमारे साथ, दीक्षा शर्मा, आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, साथ ही एडिशनल चार्ज है आपके पास सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली का। आप स्वयं इतनी यंग है कि आपको देख के मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है वो शायद ये सोचेंगे कि अभी तो आप शायद कॉलेज में ही है और लेकिन उसके बावजूद आपने जो जानकारी हमें दी है वो वाकई में बहुत ज्यादा काम की है। दीक्षा, समय बहुत कम बचा है हमारे पास, चलते चलते अगर आप हमारे युवाओं से कुछ कहना चाहें तो।
1: जी बिल्कुल, मैं हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया जी युवा एवं खेल मंत्रालय से, उनका ये कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा युवा का पंजीकरण कराना है माई भारत पे, ताकि जो एक नेशनल पोर्टल है उसका जो संदेश है वो सभी युवाओं तक पहुंचे। और दूसरा, हमारी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर सभी युवाओं को मैं आमंत्रित करती हूं कि आए और इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा सरकार की स्कीम्स का लाभ लें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि युवाओं आगे बढ़ो और अपनी जो क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको उजागर करो और देश को एक नई दिशा की ओर, विकसित भारत की ओर ले जाइए।
0: क्या बात है। दीक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: हमने बात की दीक्षा शर्मा से, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल चार्ज ऑफ सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली। जितनी बड़ी इनकी जिम्मेदारी है उतनी ही बढ़िया जो है जानकारी इन्होंने आपको दी और उतनी ही ये यंग है, मुझे लगता है कि सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जो है वो ये बन सकती है। ये जानकारी उम्मीद करती हूं कि आपके काम जरूर आएगी। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि आज के दिन 15 जुलाई के दिन हमने आप तक पहुंचाई है ये जानकारी। बदलते हुए जमाने के साथ उसकी जरूरतें बदली हैं और बदलती हुई जरूरतों ने पैदा किए हैं नए नए अवसर, और केवल नए नए अवसर नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी, इन सब चीजों के चलते जो है रोजगार के स्वरूप भी बदले हैं और बदलते हुए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, ये तो हम जानते हैं, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हैं। फिलहाल आज का हमारा ये प्रोग्राम हम कदम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
1: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
1: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
1: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी।

0: थी काली स्याही
1: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश
1: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक,
5: रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
6: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
7: नाना जी,
6: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
5: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
6: ये लो, नानी जी भी आ गई।
8: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
5: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
8: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
8: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
5: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
5: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
5: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
6: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
5: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
5: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
5: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
5: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
5: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
5: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं। कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
8: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
5: हाँ।
8: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
3: ओ।
8: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
5: बिल्कुल।
8: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
3: अच्छा।
8: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
3: अच्छी अर्थव्यवस्था।
8: हाँ।
5: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
3: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
3: ओ।
8: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
5: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
3: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
6: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
1: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा, एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
3: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
4: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
4: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
4: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: दिस इज आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रैकबैंड 103 मेगाहर्ट्ज़।
5: FM ट्रैकबैंड News, music and entertainment. This is FM Track. FM 103 megahertz.
4: This is Akashvani Kohima, the news headlines. Governor Nand Kishore Yadav discusses issues related to state's law and order and public interest with Director General of Police Naglan Rubin Sharma. Member of Parliament Lok Sabha S. Subung Meran, Jamir calls on Governor of Nagaland Nand Kishore Yadav at Lok Bhavan Kohima. On World Youth Skills Day, Chief Minister Nipirio highlights role of Nagaland Skill and Entrepreneurship Development Mission in strengthening skill ecosystem, promoting entrepreneurship and creating sustainable livelihood opportunities. Member of Parliament Rajya Sabha S. Bangnong Gonyak says World Youth Skills Day celebrates talent, dedication and potential of young people whose skills drive innovation and build a stronger future. National Commission for Women and Nagaland State Commission for Women organized state-level awareness program on prevention of stalking and cyber-stalking. Nagaland State Human Rights Commission Chairman Justice Lanu Sangam Jamir urges prompt reporting of stalking and cyber-stalking for timely documentation and intervention. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.B. Radhakrishnan administers oath to the newly elected members of the Rajya Sabha. Delhi to begin distributing free bicycles to around 1.3 lakh class 9 girl students from this month. In Madhya Pradesh, first international flight service begins from Indore today. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction is eroding global public confidence. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to take on England in the second semi-final at Atlanta Stadium tonight. That is all we have in this news headlines.
5: FM Dragoban. News, music and entertainment. FM 103 megahertz.
4: Well, hello lovely listeners, welcome back. And yes, as we start with our second transmission, first of all, a very warm welcome to every one of you. Thank you so much for tuning in. It's 4 minutes past already by the 0 o'clock, and this is what we usually do. And the usual thing I'll be giving you out that is giving you a rundown on our programs. So here is the very first program we'll be listening to. That is Western music, which will go till 4 or 1600 hours, and from 1600 hours till 1630 hours local artist program, and from 1630 hours to 1650 hours rural connect, and from 1650 hours to 1700 hours Yuvavani. That is the program from the pages of Folktale entitled. From 1700 hours to 1800 hours, we have Kaleidoscope program, and after which it will be followed by Western music. Today we have a live phone-in program in our Hindi film songs program, and that will go starting from 1800 till its 1910 hours. From 1910 hours to 1920 hours, original news in Nagamis, and from 1920 hours to 1930 hours, original news in English. Then Western music will follow up from 1930 hours till it's 2045 hours. From 2045 hours to 2100 hours, national news in Hindi. And from 2100 hours to 2115 hours, national news in English. Spotlight program will follow up starting from 2115 hours to 2130 hours. And then our Hindi film songs program, RJ's Choice, will be there from 2100 hours till it's 2200 hours. hours by 2200 hours or 10 p.m. will be Dinging FM Rainbow. So that is the program we have for you, lovelies out there. You stay tuned, be informed, be entertained, and most importantly, have fun listening to FM Dragaban. Yes, the timing for our news headlines will be from 1500 hours, 1530 hours, 2130 hours. Traffic update timings are at 1500 hours, 1530 hours, 1600 hours, and 1630 hours, and again 1700 hours. So that is the update for the news headlines and traffic updates. And yes, this is the time for our Western music show, lovely sir. So we'll begin with the very first track, and of course a Simple Plan starting out to show for us. I hope you'll have fun listening to these tracks I've already lined up for you. Also a reminder that you can definitely reach out to me. That is the number 9436805333. But yes, lovely sir, this is what I'll assure you, that you have fun, okay, to the fullest, all right? And yes, before I play you the very first track, let me first of all give you the real-time traffic update. Because of the slight technical prop, yes, we are, yes, giving you just now. But, of course, it's better late than never. Stay tuned.
6: FM Dragoban.
7: 103
6: News, music, and entertainment.
7: FM
6: 103 megahertz.
4: Welcome back, lovely listeners. So yes, we're back with a real-time traffic update as of 3 p.m. And so starting from Mount Colado BHK Junction, that is the northbound, the status of traffic is light. The southbound as well, it's light. And from BHQ to Mezzer Junction, both the north and the southbound, the status of traffic is light. From TCB to Razu Point, that is northbound, the traffic is moderate. You may want to take the alternate route, that is from Box Cutting to NHAK to Census Point. The southbound as well is moderate, that is from Razu Point to TCB. So you may take the alternate route, that is from Phulbari to Kochuze Crown to Razu Point. And from Razu Point to Census Point, both the north and the southbound, the traffic is light. From High School Junction to Census Point, both the north and the southbound, the traffic is light. And from NHAK Junction to Census Point, both the north and the southbound, the status of traffic is light. So that is a real-time traffic update as of 3 p.m.
6: FM Dragoban.
7: 103 megahertz.
6: News, music, and entertainment.
7: This is FM Dragoban.
6: FM 103 megahertz.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: প্লে কৰি দিয়া হ'ব। ৱেল লিছনাৰ্ছ খান, কলটো আহি আছে এতিয়া অলৰেডি, তো মই ফাৰ্ষ্ট কল কোন লগা আছে তুমি ৰিচিভ কৰিব পাৰিলা। হেল্ল'
1: হেল্ল' নমস্কাৰ
0: নমস্কাৰ,
1: ৰাকেশ বাত কৰা, কোন খাই শিলা হিমাচল প্ৰদেশ।
0: আপ বেকগ্রাউন্ড মে ইতনা আওয়াজ নিকল রহা হ্যায়।
1: জি জি নাই নিকল গিয়া, বাহার নিকল গিয়া। হ্যাঁ জি জি।
0: তো রাকেশ জি কেসে হ্যায় আপ?
1: বহুত বড়িয়া হ্যায়, ইস সময় জো হ্যায় ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া চল রহি হ্যায়, ওর ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া মে আপকা প্রোগ্রাম ভি সুন রহা আকাশবাণী সে কোবেন কোই মাতা।
0: ওকে ওকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আপ কোন সে মুভি কা সুননা হ্যায় আজ?
1: আজ মুঝে গানা সুননা হ্যায়।
0: ওকে,
1: ফিল্ম কা নাম হ্যায় মুস্কান।
0: মুস্কান
1: জি?
0: ওকে ঠিক হ্যায়, বাজা দেগা মুস্কান তো মেরে খেয়াল মে হোগা।
1: হ্যাঁ হ্যাঁ, দুন দুন জরা।
0: হ্যাঁ মুস্কান তো
1: হ্যায়। হ্যাঁ জি জি জি, তো উসকা এক গানা সুননা হ্যায়, জব জাগে সোয়ে।
0: জব
1: জব জাগে সোয়ে,
0: ये गाना ऐसा तो नहीं है टाइटल, जब तो नहीं है। वो हो तुम याद आए नहीं तो जाने मन इश्क हंसाते है, जिस दिन तेरे मेरी बातें, कभी जागे सोए।
1: हाँ, कभी जागे सोए। हाँ, ये, ये, ये।
0: यही बोलो ना, तो टाइटल ये टाइटल तो आप गलती बोल दिया ना।
1: हाँ, वो गलती। हाँ, कभी जागे सोए। तो चलो, तो मैं कुछ दोस्त को याद कर लेता हूँ।
0: ओके कर लीजिए।
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेशन रहेगा।
0: ओके थैंक यू।
1: तो पूरण वर्मा जयपुर राजस्थान से, भगवान सिंह परमार और महाराष्ट्र सितारा से है तनुश्री, और अमल बसमाचारी, विमल बसमाचार्य है, और रमेश प्रजापति है, रमेश पत्र है, और तमाम सुनने वाले श्रोता है जिनका भी नाम छूट गया है, उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: जी जी, ओके ओके, धन्यवाद।
0: ओके वेल लिसनर्स कैन, पहला गीत इतिया राकेश प्रजाप राकेश परा ताई कॉल कुरिया से, दैट इज फ्रॉम शिमला। ताई इतु गाना मंगिया से मुस्कान लगा फिल्म परा, कभी जागे सोए। तो इतु गीत हुनी वो इतिया उदित नारायण आरो अनुराधा पटवाल लगा वस्ती।

0: हेलो।
1: जय माता दी। मेरा
0: हाँ जय माता जी।
1: नाम है पूरन वर्मा
0: पूरन
1: और मैं
0: वर्मा।
1: आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का
0: ओके
1: नाम अंतमल बगुला। फिल्म
0: ओके। पूरन जी, तो आज कौन से फिल्म का गाना सुनना है?
1: का नाम रहेगा पापा कहते हैं।
0: पापा कहते हैं। कौन से गाना सुनना है? पापा कहते हैं।
1: इसी गाने के बोले प्यार में ऐसा क्यों होता है, तू जाने या मैं जानू। जी
0: ओके ठीक है।
1: कैसे हो सर आप?
0: हाँ ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप कैसा है?
1: बस सर मैं भी बढ़िया हूँ। और आपके मौसम?
0: मौसम अभी यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया। आज तो बहुत धूप निकला था, बहुत गर्म था।
1: जी इधर भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा मौसम में बारिश का इंतजार है सर अपन को, बस
0: हाँ
1: बारिश नहीं
0: अभी
1: हो रही।
0: अभी बारिश होने जैसा हो रहा है इधर में भी।
1: इधर भी ऐसा हो रहा, पर बारिश 15 दिन हो गए सर यहाँ के, तो हमें फसल उगाई उगाई गई, बाजरा की फसल लगी है, पर वो बारिश का इंतजार है हमें सर।
0: ओके, बारिश तो आ जाएगा लेकिन मेरे ख्याल में है कि नहीं?
1: आज सर आ तो जाएगी, पर यह कि अभी थोड़ा जल्दी आ जाती ना तो वो फसल को नुकसान होने का कम रहता, डर पड़े भी हो जाएगा अगर नहीं आएगी नुकसान।
0: हाँ, ठीक है। तब तो पुरंजी तो ये गाना बजा देगा, किसी को
1: हाँ सर, तो
0: डेडिकेट
1: थोड़ा
0: करना
1: सा
0: है।
1: आप है
0: ओके थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है अभी राकेश का कॉल लग गया तो उसके लिए रहेगा, और भगवान सिंह जी है, शिवालो वार जी है।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो।
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार।
1: कच्चा किन्हीं का से
0: भाला से? तो भाला से। अपनी किन्हीं का से? अपनी किन्हीं का से?
1: वो तो भाला से कम पर सिंपल से तो
0: हाँ
1: सिंपल से ना
0: हाँ सिंपल पाने दे भाई। कौन मुंडा नहीं के? ओके ओके ओके। कोई किन्हीं का अपनी काम काम त्याग नहीं की तबे
1: तंचे तो मैं लीप लीप मेरे छुट्टी आते
0: हैं। ओके ओके।
1: मानसून लीप ना पानी की तंचे करने कंपनी करा छुट्टी दी थी तो।
0: ओके ओके। तो
1: क्या घर पे आते हैं? घर पे बॉय की नहीं क्या कैसी तेरी जाते के होने पे?
0: ठीक आशित
1: तंचे तो तंचे तो घर पे आते
0: हैं। ओके ओके। तो आज की गाना होनी बोले मानसे बॉय कौन?
1: आज तो गाना होनी तो चीता मूवी थकी थी निकी
0: चीता
1: चीता
0: सीता
1: हाँ हाँ
0: सीता
1: चीता
0: चीता
1: आई
0: सी सी एच
1: चीता तो सी एच डबल ई टी ए एच
0: इतु तो नहीं ना कि मुझे मेरा फिल्म तो बजाय साला एक बार भी आहा नहीं मुझे लगती थी ना चीता तो
1: ओ ओ ओ ओ तो क्या ले हम है बेमिसाल
0: हम है बेमिसाल ना
1: हाय हाय
0: हम है बेमिसाल इतनी भी नहीं दे मुझे खानों दे
1: इम्तिहान I M T I H W N इम्तिहान ऐसे कैसे
0: इम्तिहान
1: हाय हाय
0: इम्तिहान इतनी भी नहीं दो इम्तिहान भी
1: ओहो
0: तो नाम
1: तो नहीं होने भी एक तमिल तक इसे लातला
0: लातला
1: हाय हाय L डबल A D L A
0: लातला
1: हाय हाय 1994
0: साल तुम्हें नहीं तो लातला भी नहीं तो लातला
1: ओ तो कहना सुनो इसमें कहना तो नाराज इग्रेक ने था कि वो है निश्चित लगी थी
0: की फिल्म
1: नाराज राज नाराज
0: नाराज
1: हाय हाय N A
0: R A
1: Z
0: नाराज नाराज भी नहीं हो
1: ओह इसमें गाना कहाँ तो आना नहीं ना
0: हो तो आने आने तो इतना भी
1: कितने हैं कि गाना मालूम हो
0: ढाली जी बोल ता कि होली भी अपनी दुख कोई दिशी कोले
1: तंत्र भी जाए से 1994 साल का मूवी का भाग भाग पड़ा सभी
0: 1994 लगा
1: हाय इतना मैं एकदम मंत्र खाना यो
0: 94 ला तो 1942 ए लव स्टोरी है से अंजाम है से क्रिमिनल है से दीवाना सनम है से इलान है से हम अब की है कौन और

0: तो हमसे है मुकाबला, इश्क में जीना इश्क में मरना, कभी हाँ कभी ना, का क्रांतिवीर मैं तेरा, क्रांतिवीर आज है।
1: ओहो क्रांतिवीर ते क्रांतिवीर एक बार कभी,
0: जब से हम तेरे फुल ऑडियो सॉन्ग जब जय अम्बे जगदम्बे जगदम्बे और झनकारो झनकारो लाफ रेप और चुनरी उड़ी सजन फूल काली चांद इतु हने अजय
1: फूल काली चांद इतु के बजा भी
0: ठीक है ठीक है बजाई दियो बजाई दियो
1: बेसी टाइम तो वेस्ट इतु ना हटे भी किसी गाना गान था कि जेरे तो उन्हा जितना कंटे गंपा जावे ना कि किसी गाना मचा कर जाए
0: थे ठीक है ठीक है एनीवे
1: डेडिकेशन तो थी रेगुलर सुमित्रा कमी सुमित्रा जीवन बसुमतारी सुमित्रा बसुमतारी रकविता मेथा
0: ओके
1: बसुमतारी अंजलि बसुमतारी जितेंद्र रंगपी और इतना कल कर
0: रमेश
1: रमेश पात्र रमेश पात्र लाखी
0: ओके
1: रकविता मेथा और जीवन थे सबके गौतम राय बोले जी भगवान सिंह परमार जी
0: राकेश
1: राकेश पूरण वर्मा वेरोनिका मैम अपनी भी
0: ओके थैंक यू दे
1: ओके ओके
0: ओके बाय बाय
1: बाय
0: तो लिसनर्स कन आपको शुनब अपने उदित नारायण और सदना सरगम लगा वास्ते फिल्म आसे क्रांतिवीर।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके भगवान सिंह जी बताइए कैसा है।
1: अच्छा है सर, फिल्म का नाम है चिराग और गाने के बोले सारे शहर में आपका कोई नहीं।
0: चिराग
1: चिराग
0: चिराग हाँ मिल गया। क्या बोला था गाना का नाम?
1: सारे शहर में आपका कोई नहीं, कोई नहीं।
0: सारे शहर में
1: जी
0: चिराग फिल्म से ये गाना तो नहीं है।
1: सर, तो आप सुना दीजिए सोतन की बेटी का, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
0: साउटन की बेटी
1: जी
0: सौतेला
1: सोतन की बेटी।
0: सौतेन की बेटी ना।
1: जी
0: ढूंढ
1: मिला सर जी,
0: रहा है मैं अभी। हाँ
1: नहीं तो और फिल्म बता दूं मैं। अलग अलग देख लीजिए, रोटी कपड़ा मकान देख लीजिए, यादगार देख लीजिए।
0: साउथन की बेटी भी नहीं है हम लोग के पास।
1: मिल गया जी सर, बताइए वो गीत है इसमें।
0: नहीं, साउथन की बेटी नहीं है।
1: नहीं ये तो सर आप, यादगार है, यादगार
0: यादगार होगा, हो भी
1: लता
0: सकता है।
1: मंगेशकर की आवाज में, जिस पद पे चला उस पद पे मुझे आंचल तो बिछाने दे।
0: ठीक है यादगार है।
1: हाँ सर, इसमें एक गीत है
0: जिस
1: लता
0: पद पे,
1: मंगेशकर जी की आवाज में,
0: हाँ जिस
1: जिस
0: पद
1: पद
0: पे
1: पे
0: चल,
1: चला उस पद पे मैं। जी
0: ठीक है
1: सर,
0: बजा देगा बजा देगा।
1: जी सर, हमारे मित्र हैं, कुछ नाम ले सकते हैं?
0: हाँ ले लो ले लो।
1: हेलो फरमाइश, एकता रेडियो ग्रुप में से हैं सर गौतम राय बोले जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, श्रीपाल गोयल जी हैं, और
0: ओके
1: दिलीप पाहुजा जी है, सुनील झा जी हैं, गजराज लोधी जी, शिवा लोहट जी, तनुश्री बिटिया, अंजलि भस्मतारी, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश पात्रे जी, भाईकन मुंडा जी, रमेश प्रजापति, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं शिमला से, आशुतोष जी है, अविनाश जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसर सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, सावनकर गंगाधर जी और पूनम दीदी है कानपुर से, इन सब पे फर्स्ट सुनना चाहेंगे सर, आपको डेलीकेट रहेगा। धन्यवाद
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके
1: सर जी, बहुत बहुत।
0: वाल लिसनर्स के नाको हुनी वो अपना लोग के लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से यादगार।
2: उस पथ पे चला, उस पथ पे

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: सर। मैं धेमाजी आसाम बिमल बसुमतारी।
0: बिमल बसुमतारी ना, धेमाजी बरा ना।
1: सर धेमाजी आसाम
0: ओके बिमल,
1: जुनानी
0: आजी कवि
1: कर
0: केनेका आछे? हवा पानी ताते?
1: सर आज रातिपुवा बारिश आई इतना बहुत गरम थाकिसे दिन तो बारिश क्या रुटा आसे तो बहुत गरम
0: ओके
1: थाकिसे।
0: ओके ठीक आछे ठीक आछे। तो की गाना हुनिबो आज, की फिल्म लगा?

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है।

0: 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि

0: किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
4: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition, and strengthening India's position as a global electric